सुख शांति चढ़दी कला बख्शनी। स्वर्गवासी गुरशरण कौर जी दे आत्मक शांति लई परिवार वालों 1000 रुपये लंगरां विच हाजिर होए हन। पातशाह कृपा करना स्वर्गी नूं अपने चरणा विच निवास बख्शना, पिछे परिवार की चढ़दी कला रखनी। प्रीत कवल कौर 501 रुपये लंगरां विच हाजिर करदे, पातशाह कृपा करना देह अरोगता सुख शांति चढ़दी कला बख्शनी। साहिल जी वालों 500 रुपये हाजिर होए हन, पातशाह कृपा करना देह अरोगता सुख शांति चढ़दी कला बख्शनी। अवनीत कौर लंगरां विच माया हाजिर करदे, देह अरोगता सुख शांति चढ़दी कला बख्शनी। जी गरीब नवाज अमृत वेले तो लैके हुण तक आप जी दे हजूरी विच जिन्ना जिन्ना संगतां वल्लों नज़र पेट हाजर

तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब कुछ जानला सब कुछ तेरे वास तेरा कर भला तेरा घर अन्न वधाई तुद घर मान माता ते अपना आप जर सर्व कला पर।

अकाल हरि अपाल हरि अछेद हरि अभेद हरि अजंत्र हरि अमंत्र हरि सो तेज हरि अतंत्र हरि अजात हरि अपात हरि अमित्र हरि अमात हरि अरोग हरि अशोक हरि अभरम हरि।

न काम क्रोध मय प्रवीण, एक ज्ञान के विहीन छिन्न कह सके तरत है। भूत बन चार चित छो न सब दूध धारी पौन के हरि सो भुजंग जानियत है। त्रिण के भजैया धन लोभ के तजैया तित गौवन के जैया वृक भैया मानियत है। नभ के उड़ैया ताहे पंछ की बटैया दे दब गुला बिडाल वृक ध्यान ठानियत है। जेते बड़े ज्ञानी तेनो जानी पै बखानी नाहे असन प्रपंच मन भूल आनियत है। भूम के बसैया ताहे भूजरी के जैया कहे नभ के उड़ैया सोच रैया कह बखानिय। फल के बसैया ताहे बांदरी के जैया कहे आदस फिरैया दर्द भूत कह पछानिय। जल के तरैया को गुंगे ऋषि का हाथ जग आग के भचैया सो चकोर सम मानिय। सूरज सिवैया ताहे कौल की बढ़ाई देत चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानिय। नारायण कछ मछ तेंदुआ कहत सब कौल नाब कौल जेह ताल में रहत है। गोपीनाथ गुजर गोपाल सब दिन चारी एकी के नाम के महंत लहियत है। माधव भवर ओटे रुको कन्हैया नाम कंस को बधैया जम दूत कहियत है। मूढ़ रूढ़ पीड़त न गूढ़ता को भेद पावे बूझत न ताहे जाके राखे रहियत है। विश्वपाल जगत काल

वेद वेद जगत देवनीत नीत कह कहत है। नाचत फिरत मोर बांधर करत घोर दामनी अनेक भाव करे भी करत है। चंद्रमा सीतरण सुर से तपत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को भरत है। शिव से तपस्याद ब्रह्मा सेना वेदचारी सनत कुमार सी तपस्या नानत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फिर भय राम चंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा और विष्णु के ते वेद और पुराण के ते सिमृत समूहन के होए होए बिताए है। मोन दी मदार कित असुनी कुमार कित अंसा अवतार कित काल बस भय है। पीर ओ पिकम्बर कित गण न परत ते भूमि हित हो मेरे भूमि ही मिलाए है। जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया गई घोसलो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है। मान से महीब और दिलीप कस छत्रधारी बड़ो अभिमान भोज दंड को करत है। दारा से दिल्ली सर द्रुजोधन से मानधारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। सिजदे करे अनेक धोप जी कबट वेश पोसती अनेक दानी वावत है। शीश को कहा भयो मल जब काटत अनेक दंड सूत न दंडोत।

शीश पट कद जाके कान में खजूरा दस मुंड छट कर मित्र पुत्र हूँ के शोक सौ आख गोचर ये फल फूल को भचैया सदा बन को भ्रमैया और दूसरो न भूख सौ कहा भयो भेड़ जो घसत सीज वृक्षर सो माटी को भचैया बोल पूछ लीजे जो कसौ कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कस भेड़ पर लोक सौ ना चोई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करोई करत है एक पाए ठंड सदा बन में रहत ब्रिज फूक फूक पाम भूम श्रावक धरत है पाहन अनेक जुग एक ठोर बास करे काक और चीर देश देश विचरत।

जोगी आबरा के बन कब हूँ सन्यास भेष बन के दिखावई गहू बन हारी गहू बैठ लाए तारी गहू लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पैर लगावे बारी कहूँ दंड धारी होए के लोग भ्रमावई कामना अधीन पर्यो नाचत है नाचन सुज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई पंच बार की दर पुकारे पर शीत काल गुंजर ओ गदहा अनेक ताप पुकार ही कहा भयो जप कल वत्र लियो कांस बीच चीर चीर चोर टाको ठारन सो मार ही कहा भयो फांसी डार बुढ़ जड़ गंग धार डार डार फांस ठग मार मार डार ही डूबे नरक धार मूड ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कस ज्ञान को विचार ही ताप के सहित जो पे पाइये अतापनाथ तापना अनेक तन गायल सहत है जाप के गियत जो पे पायत अजाप देव बोधना सदीव तुही उचरत है नब के उड़ते जो पे नारायण पाइयत अनल आकाश पंछी डोल वो करत है आग में जरत गत राण की परत कर

करीम सोए रास कर रहीम ओए दूसरो न भेद कोई भूल ब्रह्म मान बो एक ही किसे सब ही को गुर देव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो देहो राम सीत सोई पूजाओ निवाज ओई मान सब एक पै अनेको भ्रमाओ है देवता देव जज गंधर्व तुरक हिंदू न्यार न्यार देशन के

जैसे एक आग ते गनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे हुई के फिर आग में मिलाहेंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है धूर के कनु का फिर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। जैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हो ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। केते कछ मछ केते उनको करत भच केते अच वच हो सपच उड़ जाहेंगे। केते नब बीच अच पच को करेंगे भज के तक व्रत अच हो पचाए खाए जाहेंगे। जल कहाँ थल कहाँ गगन के गौन कहाँ काल के बनाए सब काल ही जबाहेंगे। तेज जीव तेज में अतेज जैसे तेज लीन ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। कुकत फिरत किते रोबत मरत किते जल में डुबत किते आग में जरत है। किते गंग बासी किते मदीना मक्का निवासी के तक उदासी के भरमाई फिरत है। करवत सहत किते भूम में गड़त किते सुवा पे चढ़त किते दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त किते जल में रहत किते ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हर देवता विरोध हरे दान बड़े बोध हरे बोधक प्रबोध हरे जापसी घास हरे चंदन लगाए हरे चुआचार पूज हरे पाहन चढ़ाए हरे लापसी गाह हरे गोरन मनाए हरे मड़ी मंडली पहारे भीतन लगाए हरे चापसी गाय हरे गंधर्व बजाए।

नने हंग नगे हंग सने हंग सना थे उदंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न पाते न सत्रे न वित्र स्वभूते भविखे भवान या चित्रे नारायण नरंकं न रूपं न रेखं न लोभं न चोभंग भूतंग भेखं न सत्रंग न मित्रंग न नेहंग न गेहंग सदेवं सदा सर्व सर्वत्र सनेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहंग जोनि अक्षयाद अद्वय जोहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न सुगं भय निर्विखादं

देह दुखं कहूं औखति रोग के शोक सुखं कहूं देव विद्या कहूं दैत बानी कहूं जच गंधर्व किन्नर कहानी कहूं राज से साध के तामसी हो कहूं जोग विद्या धरे तापसी हो कहूं रोग रहता कहूं जोग जोग तं कहूं भूम के भुगत मैं भरम भुगतं कहूं देव कन्या कहूं दान भी हो कहूं जच विद्या धरे मान भी हो कहूं राजसी हो कहूं राज कन्या कहूं सृष्ट के पृष्ठ के रिष्ट पन्या कहूं वेद विद्या कहूं व्योम बानी कहूं कोक की काव कथा कहानी कहूं अदृशा

इस व्याख्या कहूं देव बानी कहूं राज विद्या कहूं राजधानी कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारंग कहूं जंत्र रीतंग कहूं शस्त्र धारंग कहूं होम पूजा कहूं देव अर्चा कहूं बिंगुला चारणी गीत चर्चा कहूं बीन विद्या कहूं गान कीर्तन कहूं मलेज भाख्या कहूं वेद रीतं कहूं नृत्य विद्या कहूं नागबानी कहूं गारुडू गूढ़ कथा कहानी कहूं अक्षरा पक्षरा मच्छरा हो कहूं वीर विद्या भूतं प्रभाहो कहूं छैल शाला धरे छत्र धारी कहूं राज साजन दे राजाधिकारी नमो नाथ पूरे सदा सिद्ध दाता छेदी छयाद अद्व विधाता न त्रसंग।

मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र व्रात नहीं मित्र मात जय करम वरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं भेद व्योतबान जय जात पात नहीं शत्रु मित्र जय नेह गेह नहीं चिन्ह चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं भरम भेख।

कई तीरथ तीरथ भरम सो भरम कई अग्निहोत्र कई देव करम कई गर्त वीर विद्या विचार नहीं दबदास पायत न पार कहूं राज रीत कहूं जोग धरम कई सिमृत शास्त्र उचरत सो करम न्यौली याद करम कहूं हस्त दान कहूं अश्वमेध मुख को बखान कहूं गर्द ब्रह्म विद्या विचार कहूं जोग रीत कहूं बिरद चार कहूं गर्द जाच गंधर्व गान कहूं धूप दीप कहूं अर्घ दान कहूं पितृ करम कहूं वेद रीत कहूं रित नाच कहूं गान गीत कहूं गर्त शास्त्र सिमृत उचार कई बचत एक पग निराधार कई देह देह कई गेह वास कई ब्रह्मत देश देशन उदास कई जल निवास कई अग्न ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्प प्रजंत नहीं तदप दास पायतन अंत कई गर्त कोट पितया विचार नहीं तदप दुष्ट देखे मुरार बिन भगत सकत नहीं परत पान बहु करत हो मर जगदान बिन एक नाम एक चित्त लीन भोग कुटो सर्व धर्माभिहीन।

अनखंड अमंड प्रचंड नरंग जय रचयंग देव देव परंग सब कीनी दीन जमीन जमा जय रचयंग सर्व मकीन मका जय राग न रूप न रेख दुखंग जय ताप न साप न सुख सुखंग जय रोग न शोक न भोग भुयंग जय खेद न भेद न छेद छयंग जय जात न पात न मात पितंग जय रचयंग छत्री छत्र छितंग जय राग न रेख न रोग वर्णंग जय द्वैख न दाग न दुख गणंग जय अंड ते ब्रह्मंड रचयो तस चार करी नवखंड सचेव रज तामस तेज तेज कियो अनुभव बद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंध रूपिंद नगिंद नगं श्रेय जज गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव भेव नरंग नर पान त्रिपाल कराल त्रिकंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंडज से तजूत भुजंग की ये देव देव सराद पितंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न ज्योत चुतंग जय तात न मात न भ्रात सुतंग जय रोग न सोक न भोग भुवंग जय जम पह किन्नर जाच जुवंग नर नारण पुंसक जाहे किए गण किन्नर जाच भुजंग दिए गज बाजर थादक पाद गणंग भवूत भवेख भवान तुवंग जय अंडज से तज जेर रजंग रज भूमा काश पताल जलंग रज पावक पावन प्रचंड बली बन जास कियो फल फूल कली भू मेरा आकाश निवासितंग रज रोज एकादश चंद्र पृतंग।

है, समस्त सिद्ध वृद्धता सदीव सर्वसात है, अनाथ नाथ नाथ है, अभंज भंज है सदा, गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्धता, अनूप रूप स्वरूप है, अचिज तेज मानी है, सदीव सिद्ध शुद्धता प्रताप पत्र जानी है, न राग रंग रूप है, न रूप राग रेख है, अधोग दग दग है, अभूत ब्रह्म भीक है, न तात मात जात है, न पाद जिहन वर्ण है, अधेक से गेक है, सदीव विश्ववर्ण है, विश्वंबर विश्वनाथ है, विशेक विश्ववर्ण है, जिमी जमान के बिके सदीव करम भरम है, अद्वेक है, अभेक है, अलेख नाथ जानिए, सदीव सर्व ठौर में विशेख आन मानिए, न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई, पुराण यो कुरान नेत नेत कह बतावई, न करम में न धर्म में न भरम में बताइए, अगंज आद देव है कहो सो कैसे पाइये, जिमी जमान के बिखे समस्त एक ज्योत है, न घाट है, न बाढ़ है, न

राग है, न मान है, न मौत है, न साग है, न संग है, न जज है, न गंधर्व है, न नर है, न नार है, न चोर है, न साव है, न साह गो कुमार है, न ने है, न गे है, न देह को बनाओ है, न छल है, न छिद्र है, न छल को मिलाओ है, न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को स्वरूप है, न राग है, न रंग है, न रेत है, न रूप है, न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को बनाओ है, न छल है, न छिद्र है, न

परे है, पवित्र है, पुनीत है, पुराण है, अगंज है, अभंज है, करीम है, कुरान है, अकाल है, अपाल है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न शोक है, न भेद है, न भंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न साथ है, प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमात है, न सीत है, न सोच है, न ग्राम है, न गाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र के विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न द्वैख है, न भेख है, न दुई है, न द्रोह है, न काल है, न बाल है, सदी बदयाल रूप है, अगंज है, अभंज है, अवरम है, अभूत है, अछेद छेद है, सदा गंज गंज गंज है, अभूत भेग है, बलि रूप राग रंग है, न द्वैख है, न भेख है, न काम क्रोध कर्म है, न जात है, न पात है, न

न करम है न भरम है न धर्म को प्रभाव है न जंत्र है न मंत्र है न मंत्र को रलाव है। न छल है न छिद्र है न छिद्र को स्वरूप है अभंग है अनंग है अगंज से विभूत है। न काम है न क्रोध है न लोभ मोहकार है न आद है न गाद है न व्याध को विचार है। न रंग राग रूप है न रूप रेखरार है न हाव है न भाव है न दाव को प्रकार है। गजाधपि नराधपि ग्रंथ सेव है सदा से दसपति तपस्पति वनस्पति जपस सदा। अगस्त आदि देव बड़े तपस्त भी पिछे किए बेअंत बेअंत बेअंत को ग्रंथ पाठ भी किए। अगाध आद देव की अनाद बात मानिए न जात बात मंत्र मित्र शत्रु सनेह जानिए। सदैव सर्वलोक के कृपाल ख्याल में।

रूप राग न रेख रंग न जन्म मरण विहीन आदनाद अगाध पुरख सो धर्म करम प्रवीण जंत्र मंत्रण तंत्र जाको आद पुरख अपार हस्त कीट बिखे बस सब ठौर मैं निर्धार जात पात न ताद जाको मंत्र मात न मित्र सर्व ठौर बिखे रम्यो जय चक्र चिहन न चित्र आद देवो दार मूर्त अगाध नाथ अनंत आद अंत न जानिए अभिखात देव दुरंत देव भेव न जान ही जय मरम वेद कतेब सनक औसन केस नंदन पाव ही न हसेब जछ किन्नर मछ मानस मुर्ग उर का पार नेत नेत पुकार ही शिव सकर मुख चार सर्व सपत पतार के तर जाप ही जह जाप आद देव गाद तेजा नाद मुरत अताप जंत्र मंत्र न आवई कर तंत्र मंत्र न कीन सर्व ठौर रहो विराज धिराज राज प्रवीण जच गंधर्व देव दानो न ब्रह्म क्षत्रियन माहे वैसन के बिखे विराजे सूत्र भी वह नाहे गुड़ गौड़ न भील भी कर ब्रह्म से स्वरूप रात दिवस न मत

दुष्ट कंचन शत्रु वंजन परम पुरख परमाथ दुष्ट हर्ता सृष्ट कर्ता जगत मय जयगात भूत भव भविख भवान प्रमाण देव गंज आद अंत अनाथ श्रीपद परम पुरख भंज धर्म के अन करम जेत कीन तो अनपसार देव देव गंधर्व किन्न

अघौ दंडन दुष्ट खंडन काल हूं के काल, दुष्ट हर नंग पुष्ट कर नंग सर्व के व्रतपाल, सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व के अनकाम, सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाम, सर्व भुक्ता सर्व जुगता सर्व कर्म प्रवीण, सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्म अधीन, सर्व सिमृतन सर्व सा

हर हर थके सब ने पाइए तह पार। नारद आदिक वेद व्यासक मोन महान अनंत, ध्याय ध्याय थके सब कर कोट कष्ट दुरंत। गाय गाय थके गंधर्व ना जब श्र पार, सोत सोत थके महासुर।

कहाँ रंग राजा कवन हरक सोग है कवन को रोगी रागे कवन कहो तात मोहित बंधु हुरा। कवन रिष्ट को पुष्ट है कहाँ सृष्ट को विचार कवन सृष्ट को भ्रष्ट है कहो सकल विस्तार दोहरा। कहाँ कर्म को कर्म है कहाँ भ्रम को नाश कहाँ चितन की चेष्ट।

बरबंके भुजा फरंगे तेज बरंग लंगुड़िया फांधे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायुध चमके भूखंड दमके यदसित झमके फुंग फनंग जय जय ओसी मै खासुर मर्दन रंभ कबर्दन दैत जिणंग चंडा सुर चंडन मुंड विमुंडन खंड अखंडन खून किते दामनी दमंकण धुजा फुरंकण फणि फुंकारण जोध जिते सरधार विवर खंड दुष्ट प्रकार खंड पुष्ट प्रहार खंड दुष्ट मथे जय जय होशी मै खासुर मर्दन भूमा काल ऊर्द धे दामनी प्रहासन सुषम निवासन सृष्ट प्रकाशन गुड

कारण बाघ बकारण शस्त्र प्रहारण साधमते सहते सन्नाहन अष्ट प्रवाहन बोल निबाहन तेज तुलं जय जय ओ सीमा खासुर मर्दन भूमाकाश पताल जलं चाचर जमकारं चिच्छोर हारण धूम धुंकारण द्रव मथे दाढ़वी प्रतंते जोग जयंते मनुज मतंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूरज प्रतेजन अष्ट भुजे जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन भरम विनाशन धनम धुजे घुंगुरु खमंकण सहस्रज मंकण फणियर भुंकारण धनम धुजे अष्टाढ़ प्रहासन सृष्ट निवासन दोष प्रणासन चक्र कते केसरी प्रवाहे सुत सन्नाहे अगमथा हे एक वृते जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन आद कुमार अगाध वृते सुर नर मुर बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मध्य कावरू कुमारे अधम उदारे नरक निवारे आद कथे किंकणी प्रसोहन सुर नर

बारज बिलोचन वृतन विमोचन सोच विसोचन कौज कसे दामनी प्रहा से सुख सरना से शुभ्र सुभा से दुष्ट क्रसे। चंचला ब्रांगी वेद प्रसंगी तेज तुरंगे खंड सुरंग जय जय होशी मैं खासुर मर्दन आदन आदा का दूर्धन घंट का बिराजे रुंझुन बाजे ब्रह्म भाजे सुनत सुरंग को किल सुन लाजे किल विग भाजे सुखूप राजे मध उरंग दुर्जन दल दज्जे मंथन रिझे सवै न भजे रूह रणंग जय जय होशी मैं खासुर मर्दन चंड चक्रदन आद गुरंग चाचरी व्रजोदन दुष्ट विरोधन रोज रोदन क्रूर वृते धूमराज विदुन सन प्रलय प्रजुन संजय।

दुख दुख प्रवचन सेव कर क्षण संत व्रत क्षण शुद्ध सरे सारंग सन्ना है दुष्ट प्रदा है अर्ध लगा है दुख हरे गंजन को माने अतुल प्रवाने संत जमाने आध अंते जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन साध व्रत क्षण दुष्ट हंते कारण करीली गर्भ गहीली ज्योत जतीली तुंद मते अष्टायुध चमकण सत्र जमकण दामिन दमकण आदपते डुक डुकी दमंगे बाक बबंगे भुजा फरंगे शुद्ध गते जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते जछरा सुर मारण नरक निवारण पति दो धारण एक बटे पापान बेहंडन दुष्ट प्रचंडन खंड अखंडन

रक्तासुर मर्दन चंड चक्र दंदान वर्दन बिडाल वदे सरदार अभिवरखण दुर्जन धरखण अतुल नमरखण धरम दुजे धूम राज विदुन संश्रोणत चुन संसुंभन पादन सुंभ मथे जय जय होशी मैं खासुर मर्दन आद नील अगाध कथे।

तन भय अनंत तह कहो यथावत रण तंत करता करीम कातर कृपाल अभूतन भय दयाल दाता दुरंत दुख दोख रहत जेह नेत नेत सब वेद कहत। कई ऊच नीच की नो बनाओ सब वार पार जा को प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों न सेवंत ताहे। कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरज सिवंत कई पलट सूरज सिद्धता कराए प्रभ एक रूप द्वय के लखाए। अंछिज तेज अनभय प्रकाश दाता दुरंत अद्वय ना सब रोग सोग ते रहत रूप अनभय अकाल अच्छा स्वरूप। करुणा निधान कामल कृपाल दुख दोख हरत दाता दयाल अंजन विहीन अनभंजनाद जल जल प्रभाव सर्वत्र साथ। जय जात पात नहीं वेद भरम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय शत्रु मित्र दु एक सार अच्छा स्वरूप अवचल पार। जानी न जाय जय रूप रे कहे वास दास कहे कौन भे कहे नाम दास है कवन जात जय शत्रु मित्र नहीं पुत्र भ्रात। करुणा निधान कारण स्वरूप जय चक्र चरण नहीं रंग रूप जय खेत वेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करत पार। ऊर्धं विरह सिद्धं स्वरूप बुद्धं कपाल युद्धं अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग अंछिज तेज अनभिज दाग। जल थल महीप बंधन दुरंत जय नेत नेत निसिद्ध नु चरंत पायो न जाय जय पैर पार दीनान दोख दहता उतार। कई गोट इंद्र जय पानहार कई गोट रुद्र जुगिया द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मानंद जय नेत नेत निसिद्ध नु चरंत त्वा प्रसाद सवैये। दीनन की प्रतपाल कर संतु बार गनी मन गारे पंच पशु नक नाग नरा देव सर्व समय सबको व्रत पारे। पोखत है जल मै थल मै बल मै कल के नहीं करम बिचारे दीन दयाल दयानिध दोखन देखत है पर देत न हारे। दाहत है दुख दोखन का दल दुजन के बल मै दल डारे खंड अखंड प्रचंड पहारण पूर्ण प्रेम की प्रीत संभारे। पार न पाए सके पदमापद भेद कते भेद उचारे रोज ही राज बिलोकत राज करोख रुहान की रोज नटार। कीट मतंग कुरंग भुजंगम भूत भविख भवान बनाए देव देव खपे अहमेव नभेव लख्यो ब्रह्म स्यो भरमाए। वेद पुराण कतेव कुरान हसेव थके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पद स्यो किन श्री पदमापद पाए। आद अनंत अकात तो भूत भविख भवान अभय है अंत बिहेना नादम आबादागा दुख छिद्र छह है। लोगन के करता हरता जल मैं थल मैं भरता प्रभ है दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद मापद ए है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न सुख न भोग न भय है देह विहीन स्नेह सबोधन देह विरक्त गेह अच्छा है। जान को दे द जान को दे द जमीन को दे द जमान को दे है काहे को डोलत है तुमरे सुत सुंदर श्री पदमा बदल है। रोकंते और सोकंते जल जोकंते वो भांत बचावे शत्रु अनेक चलावत घावत उतन एक न लागन पावे। राखत है अपनो कर दे कर पाप संभूहन भेटन पावे और की बात कहा कहे तो सौ सो पेट ही के बड़ बीच बचावे। जाच

सो दानव देव अवे तुम्हें सब ही कर ध्यावे। भूम आकाश पताल रसातल जच भुजंग सब सिरन आवे। पाए सके नहीं पार प्रभाहु को नेत ही नेत भेद बतावे। खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानंद से रुम नारिक से सब हो मिल गायो। वेद कते बिन भेद लखियो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाए सके नहीं पार उमापद सिद्ध सनात सनंदन ध्यायो। ध्यान धरो ते को मन मै जय को अमितो जो सब जग छायो। वेद पुराण कतेब कुरान अभेद निर्वाण सब बजहारे। भेद न पाए सक्यो अन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साग न शोक न संग तिहारे। आदर नाद अगाध बेगद वेग जप्यो तिन ही गुलतारे। तीरथ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे। देश विजय कर बेस बोधन के सरे न मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग धरे वो न्यास करे मुखकारे। दीन दयाल काल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे। त्व प्रसाद कवित अत्र के चलैया चित छत्र के धरैया छत्र धार्यो के चलैया महासत्रण के साल है। दान के दिवैया महामान के बढ़ैया वसान के दिवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जितैया विरुद्ध

लाहि मार ध्यावे घोर कर दे जी गुण गावे तेरे नाम है। जोग जोग साधे पौन साधना कि तेग बंदे अरब के अरबी अराध तेरे नाम है। फारा के फिरंगी माने गंधारी पूरे सी जाने पछम के पछमी पछाने निज काम है। मरटा मंगल तेरी मन सो तपस्या कर दृढ़ वैद लंग पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली के रंग के फिरंगा वाले दिल्ली के दिल वाले तेरी आगे में वाले दिल्ली के रोह के दिल्ली के मांग दिल के मांग दिल के मांग दिल के मांग दिल के मांग दिल के मांग दिल के मांग दिल के मांग दिल के मांग दिल के मांग दिल के मांग दिल के मांग दिल के मांग दिल के मांग दिल के मांग दिल के मांग दिल के मांग दिल के मांग दिल के मांग दिल के मांग दिल के मांग दिल के मांग दिल के मांग दिल के मांग दिल के मांग दिल के मांग दिल के मांग दिल के मांग दिल के मांग दिल के मांग दिल के मांग दिल के मांग दिल के मांग दिल के मांग दिल के मांग दिल के मांग दिल के मांग दिल के मांग दिल के मांग दिल के मांग दिल के मांग दिल के मांग दिल के मांग दिल के मांग दिल के मांग दिल के मांग दिल के मांग दिल के मांग दिल के मांग दिल के मांग दिल के मांग दिल के मांग दिल के मांग दिल के मांग दिल के मांग दिल के मांग दिल के मांग दिल के मांग दिल के मांग दिल

देव देवतान को सुरेश दानवान को महेश गंग दान को अभेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे न दीन सात दीन कहियत है। पाइये न पार तेज मुझ में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है। हाथी की पुकार पल पाजे पहुंचतता है चिट्ठी की चिंगार पहले ही सुनियत है। किते इंद्र द्वार किते ब्रह्मा मुख चार किते कृष्णा अवतार किते राम कहियत है। किते ससुरासी किते सूरज प्रकाशी किते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है। किते महादीन किते व्यास प्रवीण किते कुमेर कुलीन किते जच कहियत है। करते हैं विचार पैना पूर्ण को पावे पार ताही ते अपार निराधार लहियत है। पूरन अवतार निराधार है न पारावार पाइये न पार पे अपार के बखानिये। अद्वा पे नासि परम पूर्ण प्रकाशी महारूप हूँ के राशि है अनासि के मानिए। जंत्र हूँ न जात जा की बाप हूँ न मायता की पूर्ण प्रभा के सो छटा के अनुमानिये। तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र के जानिए। तेज हूँ कतार है के राजसी को सार है के शुद्धता को घर है के सिद्धता की सार है। कामना की खान है के साधना किसान है विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है। सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूँ को रूप है कुमत को प्रहार है। दीनन को दाता है गनी मन को गारक है साधन को रचक है गुणन को पहार है। सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अच्छे अविनाशी है। काम को कुनिंदा है के खूबी को देहंदा है गनी मन गरिंदा है के तेज को प्रकाशी है। काल हूँ के काल है के सत्रन के साल है के मित्रन को भोगत है के वृद्धता की बासी है। जोग हूँ के जंत्र है के तेज हूँ को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है। रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को वास है के बुद्ध हूँ का घर है। देवन को देव है निरंजन अभेव है अदेवन को देव है के शुद्धता को सर है। जान को बचैया है मान को दिवैया है जंजाल को कटैया है के कामना को कर है। तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महीपन को मंड है के स्त्री है नर है। विश्व को भरण है के आपदा को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है। भाई ये न पार पारावार हूँ को पार जय को की जत विचार सो विचार को निवास है। हिंगुला हिमालय का वह बसी हल विध्या पूर्व न पार पावया सत्यानाश है। देवन को देव महादेव हूँ के देव है निरंजन अभेव नाद अद्वय अविनाशी है। अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीन है कटैया जम जाल के। देवन के देव महादेव हूँ के देवनाथ भूम के भुजैया है मुहैया महाबाल के। राजन के राजा महासाज हूँ के साजा महाजोग हूँ को जोग है धरैया धर्म छाल के। कामना के कार है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के। छीर कैसी छीरावत छाछ कैसी छतरा नेर छपा कर कैसी छप काल इंद्र के कूल के। हंसनी सिसी हरुम ही रसी हुसैनाबाद गंगा कैसी धार चली सातु सिंध रूल के। पारसी बलाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरसी सुरंगाबाद नी के रही झूल के। चंपासी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के। फटक सी कैलाद कमाऊ गढ़ कांसीपुर सी सुरंगाबाद नी के सोहियत है। हिमा सी हिमालय हर हार सी हलब्बा ने रहंस कैसी हाजीपुर देख मोहियत है। चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगिर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है। गंगा सम गंग धार बकान सी बुलंदाबाद कीरत तिहारी के उजियारी सोहियत है। फरासी फिरंगी फरासीस के दुरंगी मकरान के बृदंगी तेरे गीत गायत है। फकरी गंधारी गोर कखरी गर्दे जचारी पौन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है। पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्व ठौर में विराज जहाँ जहाँ जाइयत है। पूरण प्रतापी जंत्र मंत्र दयाता बिनाद कीरत तिहारी को न पार पाइयत है।

कहूं सिमट भयो संकर कैठा, सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आज जुगाद स्वरूप स्वयंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो, दुष्ट जिते उठ

सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मण सच्चे तेरे लोक सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुकुम सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तू दाखल लख करोड़ सच्चे सब सप्तान सच्चे सब जो सच्ची तेरी सच्ची सादा सच्ची तेरी कुत्र सच्चे पातशाह नानक सच्चे अहिंसा सच जो मर जमे सो का चन